کی ویرا پر یہ محبوب کی مرضی تھی ملے اس کو اماں.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे ज़हनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8 a.m. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
0: 100 FM। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
10: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका? जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
12: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
13: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो करीबी एचपीएल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
14: एंड सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
15: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
16: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाए उमराह पर जाए
0: एंड एचबीएल फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां एचबीएल
17: एंड एचबीएल इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार
11: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
9: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
18: FM 100
19: 31 saal FM 100 Aapki awaaz
18: Assalamu alaikum Pakistan Assalamu alaikum Pakistan

0: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज़्ज़म जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज़्ज़मीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत और ज़वाबित लागू है.
0: This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
6: तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
0: एंड
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: एंड HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार.
7: एंड
8: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
3: And
9: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100 traffic update.
1: शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक कायदाबाद से मरीज सिटी और वहां से एयरपोर्ट की जाने आने वाला ट्रैक स्लो मूव कर रहा है। इसके साथ साथ वो ट्रैफिक जो इस वक्त जा रहा है लियाकतबाद डाखाने से हबीब बैंक और वहां से शेरशाह की जानेब, उस पर ट्रैफिक का दबाव इस वक्त शेरशाह की जानेब जाने वाले ट्रैक पर भी ट्रैफिक का दबाव इस वक्त ज्यादा है। और उसके साथ साथ अख्तर कॉलोनी सिग्नल से वो ट्रैफिक जो पंजाब चौरंगी की जानेब जा रहा है उस पर ट्रैफिक का दबाव इस वक्त ज्यादा है। लिहाजा तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सकें। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99% 11.99%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%
6: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: 100 FM।

0: पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा।
4: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
6: एंड HBL फ्रीडम का जहां ख्वाब वहां HBL।
7: एंड HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार।
8: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
9: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
10: Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM 247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: FM 100 traffic update.
1: मैं हूं फरोखजार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर इस पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। खलीबाबाद से वो ट्रैफिक जो हसन स्क्वायर और वहां से आ रहा है इस वक्त स्टेडियम रोड कासाज शाहरा फैसल की जानेब, उस पर ईसा नगरी के पास ट्रैफिक का कोई दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड से वो ट्रैफिक जो नीपा चौरंगी से इस वक्त जेल चौरंगी की जानेब जा रहा है उस पर भी ट्रैफिक का कुछ दबाव बढ़ गया है। इसके साथ साथ चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से वो ट्रैफिक जो मुर्तजा चौरंगी से इस पर जा रहा है सिंगर चौरंगी की जानेब, उसके दरमियानी रास्ते पर ट्रैफिक का दबाव इस वक्त कुछ ज्यादा है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह रहें ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सकें। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.9%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: 100 FM। सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
3: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
11: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
12: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
8: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: This program is brought to you by
5: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن،
3: اینڈ سرسبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تا جا، اینڈ
13: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
3: اینڈ
14: ٹبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں،
3: اینڈ
15: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل،
8: اینڈ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار،
11: اینڈ پاکستان کا بیسٹ بینک نیزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک،
3: اینڈ
16: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
17: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365
18: FM 24/7/365
19: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
20: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत तो जवाबित लागू है.
4: किसने कहा था पैसे बचा.

0: This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
0: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
3: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
5: एंड HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार
6: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
7: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.

0: Mutter.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: अपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
11: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
12: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराय तो जवाबित लागू है।
13: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस

0: कार्ड की। आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
4: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: मेरा आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: एंड सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा।
4: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
1: एंड
5: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्राह पर जाएं।
1: एंड
6: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: एंड
8: HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार।
1: एंड
9: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
1: And
10: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
11: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM 247365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
10: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
7: 100 FM।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: 100 FM।
10: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

男人回来。

0: your location for maximum music.
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूरशुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
5: किसने कहा

0: This program is brought to you by
1: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
10: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू है।
11: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
12: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
13: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 0211118 2725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: जरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: वीकली लकी ड्रॉ विनर सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: This program is brought to you by
5: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365.
6: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजा तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: This program is brought to you by
3: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
4: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखिए, अगर आपके जहर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। देखिए, आपके शनाख्ती तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 12 noon. This program was brought to you by
1: VR Telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan.
5: Assalamu alaikum pakistan.

This is the Lunchtime Special. Only on

Hello and assalamu alaikum Pakistan. This is me Fatima Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji hongi aap se khoob sari baatein, share karenge kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. तो चलें जी करते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, क्योंकि बाकायदगी से आगाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से होता नहीं बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो चलें जी, लेट्स बिगिन.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो ही चुका है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे तरीका कार के कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी स्टेटस हो चुका है अपडेट। जी तो तरीकाकार आपको बता दिया है, अब हम इंतजार कर रहे हैं आपकी हाजिरी का। तो जल्दी जल्दी से आप लोग अपनी हाजिरी लगाएं और इस वक्त हमें बताएं कि आप लोग हमें सुन कहां से रहे हैं। इस वक्त आप लोग अपने घर में हैं, इस वक्त आप लोग रास्ते में हैं, इस वक्त आप लोग आराम कर रहे हैं, इस वक्त आप किसी काम में बड़े मसरूफ हैं, इस वक्त आप ऑफिस में, इस वक्त आप किसी मंजिल की जानिब जा रहे हैं या कहीं से बहुत खुशी खुशी वापस आ रहे हैं या फिर कोई ग्रोसरी करने जा रहे हैं या फिर कुछ मैचिंग ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी हर जानिब ना कोई मसरूफियत होती है। अच्छा, और बहुत सारे लोगों की उसी के साथ साथ ये भी प्रेफरेंस होती है कि भाई जो काम है ना वो जल्दी जल्दी कर लिए जाए, इसलिए ताकि जो रश का टाइम से बचत हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो रश में जाने से बड़ा घबराते हैं और उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि चाहे वो ग्रोसरी कर रहे हैं या दीगर काम कर रहे हैं तो वो ऐसे टाइम पर करें जिस टाइम पर रश कम हो। ऐसे सही है, कुछ जगहों पे ना रश कम होने में बड़ा फायदा हो जाता है, जैसे कि आपकी बिलिंग जल्दी हो जाती है, आपको जो है वो सही से लोग एंटरटेन भी कर चीजों के बारे में बता भी रहे होते हैं, तो ये अक्सर औकात फायदा हो जाता है। लेकिन समटाइम्स आई थिंक रश ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। जब रश तब अच्छा लग रहा होता है जैसे कि चांद रात पे, ये जो रौनक के महीने मतलब रमजानों में जो एंड का अशरा होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम पे जो एक रौनक आपको हर जाने हर तरफ नजर आ रही होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। तो कुछ रश में वाकई में मजा आता है और कुछ रश आपको बड़ा इरिटेट कर रहे होते हैं। सो क्राउड में भी डिफरेंस होता है कि कौन से रश में आप एंजॉय करते हैं और कौन से रश से आप हो जाते हैं बेजार। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेजारी का जो टाइम होता है ना वो तब होता है कि जब आप टिल पर खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे होते हैं। आय हाय हाय, वेरी वेरी पेनफुल। और ये वो टाइम होता है जो कि आई एम श्योर कि हम सब ने एक्सपीरियंस किया है और इस पेनफुल टाइम से हम बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो खैर जी, आप लोग इस वक्त हमें कहां से सुन रहे हैं जरूर बताएं, अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। चलते हैं एक और ट्रैक के जाने और आते हैं वापस इस ट्रैक के बाद।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं।

0: जानों और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
1: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूम के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
4: वीकली लकी ड्रॉ विनर सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: facebook.com/fm247365 fm247365

Yes everybody, so I am back again. और आप लोगों से बातों का सिलसिला हमारा जारी है क्योंकि हम आपके साथ 2 बजे तक मौजूद होते हैं और इस दौरान बहुत सारी बातें होती हैं. और भाई आज है 30 सितंबर. जी हाँ, बिकॉज सितंबर इज अबाउट टू एंड और आज आखिरी दिन है इस महीने का. और इसके बाद इंशाल्लाह जब हमारी आपसे मुलाकात कल होगी तो हम एक नए महीने में दाखिल हो जाएंगे. एंड सितंबर इज गुड मंथ. गर्मी भी हमने इस महीने में एक्सपीरियंस की, लोगों का अच्छे एक्सपीरियंस रहे, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स रहे. एंड ऑल दो दिस मंथ इज गोइंग टू बी एंड, और इसी के साथ साथ आज जो है वो कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी आपको बताते हैं. तो आज इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे मनाया जाता है. इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे हर साल 30 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. इस दिन का मकसद पॉडकास्ट की दुनिया को सेलिब्रेट करना और ऑडियो स्टोरी टेलिंग, नॉलेज शेयरिंग और डिफरेंट वॉइस को हाईलाइट करना होता है. पॉडकास्टिंग ने लोगों को अपनी स्टोरीज, एक्सपीरियंस, ओपिनियंस और नॉलेज की दुनिया के तौर पर पहचाना जाता है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां आज एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, न्यूज, हेल्थ, बिजनेस और पर्सनल स्टोरीज हर टॉपिक पर पॉडकास्ट अवेलेबल है. और पॉडकास्ट सिर्फ एक ऑडियो प्रोग्राम नहीं बल्कि आइडियाज और स्टोरी की दुनिया तक पहुंचने का एक पावरफुल मीडियम है. और ये बात हकीकत है कि भाई आजकल के टाइम में जो लोग हैं वो पॉडकास्ट बड़े शौक से देखते हैं, फॉलो करते हैं एंड दे रियली लाइक इट. और लोग जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं. और आजकल जो है वो हम इसका पॉडकास्ट देखते हैं, हम उसका पॉडकास्ट देखते हैं. और हकीकत है कि बहुत सारे लोगों की स्टोरीज इसमें हाईलाइट होती हैं, बहुत सारी चीजें पता चल रही होती हैं. और अब तो पॉडकास्ट में हमारे पास बड़ी वैरायटीज हैं. कहीं हॉरर हमें स्टोरीज पता चल रही होती हैं, कहीं किसी की लाइफ जर्नी के बारे में हम जान रहे होते हैं. तो ये एक बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है जिसे हम सब जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं. तो आज इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे मनाया जा रहा होता है. सो आप सुनते हैं या देखते हैं इस पॉडकास्ट को. और एक और भी दिन मनाया जाता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज मैंने सोचा है कि बातों के साथ साथ ट्रैक्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बने रहेंगे. तो थोड़ी सी बातें और थोड़े से ट्रैक्स, तो डबल डबल रहेगा ट्विस्ट, यानी कि गाने भी और बातें भी. सो एक और ट्रैक एंजॉय करते हैं, फिर वापस आकर आपको और बताते हैं कि और कौन सा दिन मनाया जा रहा है आज के दिन.

ओके सो आप लोग इसको एंजॉय कर रहे थे. इसी के साथ साथ अभी हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि भाई आज इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे मनाया जा रहा होता है, और पॉडकास्ट जो है वो आजकल सबका एक फेवरेट एंटरटेनमेंट है. सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं पॉडकास्ट को. इसी के साथ साथ और कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं इस पर भी हम करेंगे आपसे बात. बातें बहुत सारी हैं जुड़ी आप लोगों के साथ की जाएंगी. और इसी के साथ साथ जो है वो सितंबर इज अबाउट टू एंड. और उसी के साथ साथ अच्छी खबर ये भी है कि सितंबर जो है वो आखिरी में जो है वो हमारे लिए सितंबर नहीं हो रहा. मतलब कितनी ज्यादा गर्मी नहीं है. द गुड थिंग एंड द गुड फैक्ट इज दैट कि इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 32 है, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत इज 34. एंड द गुड थिंग इज दैट कि वो जो गर्म हवाएं और वो धूप की तपिश और वो गर्मी और वो पसीना, तो ये वाला हाल नहीं है. लेकिन मौसम के हवाले से एक अदद अच्छी खबर भी मेरे पास मौजूद है जो मैं अपने तमाम सुनने वालों को बताऊंगी, जिसे सुनने के बाद आप मजीद खुश हो जाएंगे. तो वो अच्छी खबर क्या है, बता दूं या थोड़ा सा सस्पेंस रखूं? सोचूं कि चलो जी थोड़ी देर बाद बताएंगे. जरा भी आप सोचें कि वो अच्छी खबर क्या है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. तो थोड़ा सा तो इंतजार करें भाई. मौसम की कभी कभी तो अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, तो वो खबर हम अचानक से नहीं देंगे, बल्कि थोड़े से सस्पेंस क्रिएट करके आपको बताएंगे कि वो मौसम की अच्छी खबर क्या है. लेकिन अच्छी खबर है जो हम आपको जल्द सुनाएंगे थोड़े सस्पेंस के बाद. अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारे पास मैसेजेस भी आ चुके हैं जिसे हम करेंगे शामिल. तो हमें कहती हैं मारिया खान फ्रॉम कराची, हेलो फातिमा आपी, हाउ आर यू? हाय, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. कहती हैं योर नाइस शो है, थैंक यू. और किसी गाने की रिक्वेस्ट करती हैं. ठीक है जी, हम लगा देंगे, ट्राई करेंगे बेस्ट. जरीनूर कहती हैं सलाम, कैसी हैं? बहुत दुआ आपके लिए. वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं जरीनूर आपके लिए भी. वेरी गुड. आज जरीनूर ने जल्दी हाजिरी लगा दी हमारे प्रोग्राम में, वरना आजकल जरीनूर जो हैं वो लेट लेट हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं. बस लंच बताती हैं अपना और फिर चली जाती हैं. इसका मतलब है आज जरीनूर की लाइट नहीं गई है और जरीनूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं. दैट इज सो नाइस एंड ग्रेट कि आप आ गई हैं. सो जबरदस्त हो गया जी. अच्छा जी, हमारे पास इसी के साथ साथ रिक्वेस्ट आई है, आप ही वो वाला ट्रैक लगाएं जो आजकल आप लगा रही हैं. अच्छा जी, कौन सा वाला ट्रैक है जो मैं आजकल लगा रही हूँ? ओके, आई रिमेम्बर. आजकल ये ट्रैक बहुत ट्रेंडिंग है और लोग अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर भी इसको अपनी रील्स के तौर पर लगा रहे हैं. तो मैं समझ गई हूँ कि आप लोग किस ट्रैक की बात करें. तो शामिल करते हैं हम इस ट्रैक को और आते हैं वापस हम इस ट्रैक के बाद, क्योंकि ये मेरे लिसनर्स का बड़ा फेवरेट चल रहा है और लोगों का इंस्टाग्राम पर भी फेवरेट चल रहा है. तो बिल्कुल भाई, ऐसे जो भी ट्रैक्स आपको नए नए ट्रेंडिंग ट्रैक्स और मजे के लगते हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम आपके मैसेजेस का इंतजार करेंगे. तो आते हैं वापस हम इस ट्रैक के बाद. तो कहीं जाएगा मत, वी विल बी राइट बैक.

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
5: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 100 FM।
7: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेजते। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन न करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کرے. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں, سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرط یہ کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں. میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
9: FM 247 365 FM 247 365

only on FM 100 Pakistan. All right, जी, so I am back again और वापस आ चुके हैं और हमारे पास मैसेजेस भी आ चुके हैं. तो समी शेख ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम आरजे फातिमा, कैसी हो आप? सलाम टू ऑल. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कहते हैं आपके स्टूडियो में माइक पे आपकी वॉइस स्लो आ रही है, प्लीज चेक. तो बिल्कुल हमने चेक कर लिया है. आई होप सो समी, अब आप हमें सुन सकते हैं बआसानी. अच्छा भाई, मौसम की खबर के लिए थोड़ा सा सस्पेंस हमने रखा था कि जी कोई अच्छी खबर है या क्या खबर है, आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद बताएंगे. तो मैंने सोचा कि यार इतना ज्यादा ना किसी को तजस्सुस में नहीं रखना चाहिए बल्कि बता देना चाहिए. तो कराची वालों, अब 5 अक्टूबर से कराची में अबर आलूद मौसम का इम्कान है. जी हाँ, 5 अक्टूबर से समुद्री बादलों की वजह से धूप की शिद्दत कम होगी और दर्जा हरारत भी मामूल से कम होगा और मौसम खुशगवार रहेगा. 5 या 6 अक्टूबर से चंद एक इलाके में हल्की फुल्की बारिश का भी इम्कान मौजूद है. लाइक हल्की फुल्की बारिश या हल्की फुल्की फुहार आप कह लें, तो इसका भी इम्कान मौजूद है. सो दिस इज सो नाइस. जी हाँ, आज सितंबर की 30 तारीख है और आज भी ये है कि हमें इतनी ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही है क्योंकि मौसम जो है वो कदरे बेहतर है. और ये भाई अच्छी खबर सुनने को हमें मिल रही है कि अक्टूबर के महीने में हम अबर आलूद मौसम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट. यार बारिश का कुछ नहीं कह सकते कब होगी या नहीं होगी, लेकिन इसमें भी चंद एक कोई लकी इलाके होंगे जहां पर हल्की फुल्की फुहार हो जाएगी. और फुहार तो कराची वालों ने खैर एक्सपीरियंस किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो वाली बारिश होती है कि जी काले काले बादल आ गए हैं और अब तेज वाली बारिश होने वाली है, वो हमने इस साल एक्सपीरियंस नहीं की. तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन द गुड वेदर वी एक्सपीरियंस, दैट इज सो नाइस. जरीनूर कहती है, सही कहा आपने, आज सुबह से लाइट नहीं गई, तभी मैं समझ गई थी. जरीनूर ने जल्दी से अपनी हाजिरी लगा ली है, ग्रेट हो गया है जी. कहती है गर्मी भी कम हो गई है, शुक्र है, बस बारिश हो जाए दुआ है. बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक से हमारी दुआ है, लेकिन फिलहाल भी कोई बारिश के इम्कान नहीं नजर आ रहे हैं. बहुत हल्की फुल्की फुहार चंद एक इलाके में प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली है, तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मौसम अच्छा रहेगा. सो यार मैं कहती हूँ 100 बातों की एक बात यह कि सबसे अच्छा है कि मौसम अच्छा रहेगा ना. ये खबर मुझे लगता है कि सब खबरों पर काफी भारी है कि मौसम ने अच्छा रहने का ऐलान कर दिया है. अब आई होप कि ये ऐलान काफी दिनों तक स्टे करे तो भाई बेहतरीन हो जाएगा कि मौसम ऐसा रहे. लेकिन भाई अच्छी खबर ये थी तो मैंने कहा चलो जी अपने सुनने वालों को अच्छी खबर सुना दें कि भाई आप लोगों के लिए मेरे पास अच्छी खबर मौसम के हवाले से क्या है. अब लेट्स सी क्या होता है, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा. तो इसके लिए हम कर लेंगे कुछ इंतजार और इंशाल्लाह मेरी दिली दुआ ये भी है कि बहुत जल्द हम आपको ये खबर भी सुनाएं कि जी हाँ पेट्रोल की कीमतों में बहुत जबरदस्त किस्म की कमी आ चुकी है, जिसे सुनने के बाद अवाम जो है वो हैरान परेशान और एक्साइटेड हो गई है. तो ऐसी खबर भी अल्लाह करे कि हम आपको जल्द सुनाए. तो उसके लिए भी हमारी दिल से दुआ है कि जल्द अज जल्द हम आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनाएं. खैर जी, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर ट्रैक और ट्रैक के बाद हम वापस आते हैं और मजीद आपसे करते हैं बातें. कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपके साथ जो है वो 2 बजे तक मौजूद हैं. तो वी विल बी राइट बैक.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: खत्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। इस मामले को उछालकर लोगों के जज्बात को भड़काने से गुरेज करें। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
4: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
7: This program is brought to you by
8: Step School से Foundation हो Strong. Call now at 03111117837।
9: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: FM 247 365 FM 247 365.
11: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
13: इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने अपने आप को सपोर्ट कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। पर अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसे।

0: 6:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111-7837.
0: facebook.com/fm247365
3: FM 247 365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
4: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
5: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
6: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश

Alright, जी everybody, so I am back. Sorry for being a little bit late. लेकिन हम आ चुके हैं वापस और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान. तो हमारे पास मैसेजेस भी आ चुके हैं हमारे लिसनर्स के, जिन्हें जो है वो हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जिस वक्त हमारे साथ कौन कौन मौजूद है. तो जी लुकपल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लवली आरजे आप, मैं हाफ शो में आपको मिस कर दिया, मैं हॉस्पिटल में थी अभी आई हूं. ओ माई गॉड, गॉड ब्लेस यू, स्टिल आप हॉस्पिटल में थी तो आप जल्दी से ठीक हो जाएं भाई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, गेट वेल सून एंड वेरी वेरी सून. कहती हैं जी आज लंच में लौकी कीमा है. ओ वाह, लौकी कीमा मैंने पहली दफा सुना है, दैट्स रियली नाइस. इनके लंच में लौकी कीमा है. इसी के साथ साथ जरीन नूर कह रही हैं कि जी बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, बस पेट्रोल की भी अच्छी खबर मिल जाए. बिल्कुल जरीन नूर, मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं जल्द अज जल्द अपने लिसनर्स को ये अच्छी खबर सुनाऊं कि जी हाँ पेट्रोल की कीमतों में जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की कमी हुई है और अल्लाह जाने की ये खबर मैं अब कब सुनाऊंगी आप लोगों को. तो इंतजार है मुझे इस अच्छी खबर को सुनाने का. अच्छा अभी तो हमें बहुत टाइम से ये वाली खबर सुनने को भी नहीं मिल रही ना कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 30 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कम हो गई हैं, 10 रुपए या 5 रुपए की भी खबर अभी तक हमें नहीं मिली है. तो ऐसी मिल जाए सो वी विल बी सो हैप्पी. कहती हैं आज खाने में आलू गोश्त और बॉयल चावल हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. और शायद आज रात में हमारे यहाँ का भी ये मेन्यू मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि जी दाल चावल और बॉयल चावलों का प्लान है, क्योंकि ये भी सबका बड़ा पसंद किया जाने वाला कॉम्बिनेशन है, दाल चावल नहीं सॉरी आलू गोश्त और बॉयल चावल. सो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. ऑल राइट जी, तो इस वक्त हमारा जो वक्त होता है वो लंच पर बात करने का भी होता है, लेकिन इसी के साथ साथ जो मेरे प्रोग्राम का वक्त है ना वो भी अख्तितामी मरहल के बहुत करीब आ चुका है. सो हमेशा की तरह आप लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा दिन और एक अच्छा वक्त गुजरा, और अब इसी के साथ साथ इंशाल्लाह हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी, सेम प्लेस सेम टाइम. तो आपने क्या करना है जी, अपना भरपूर ख्याल रखना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, गुस्से से करना है परहेज क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए है बहुत मुजर. तो गुस्से से रहें दूर और हंसते मुस्कुराते रहें, और अगर किसी से नाराज हैं तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लें क्योंकि हंसी खुशी और दोस्त बन के रहने में रहता है बड़ा अच्छा. और हंसते मुस्कुराते ही हमें दीजिए इजाजत क्योंकि इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम. सो अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह. बाय बाय.

Hello, hello, hello everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in our Radio. My name is Jasmine. So guys, today is Wednesday and 30th of September 2026. Aap sunne hamara show. So aap log ko batate chale, it's a request based show. Aap log request kar sakte hain for your favorite tracks. Tarike kar bahut hi aasan hai. Just type KHI. Then leave space, आपका मैसेज, आपका नाम, आपकी रिक्वेस्ट और उसे 3636 पर भेज देना है. मेक श्योर जो आप हमें जब मैसेज करेंगे तो साथ में आपने अपना नाम जरूर लिखना है. जो रिक्वेस्ट सुनना चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखना है. पेज पे भी आप लोग कर सकते हैं facebook.com/rz.jasmine. राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो. सो मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. हमारे साथ रहेगा

Radio. Genie in Radio.

0: 247-365. FM 247-365. KHI space your text message. Send it to 3636.
1: Radio, radio.

0: Radio.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: Hello, hello, hello everyone and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan and aap sun rahe hain program Easy Life, High Blood Pressure Ki Baad, Easy Day Ke Saath, which is brought to you by Varick Pharmaceuticals. So, janab, aaj humare show ka jo topic hai, it's about hypertension management with lifestyle modification. And humare saath show par maujood hain Dr. Saleem Shahzad, Associate Professor, Certified Health Professional Education, Certified Clinical Research Professional, Consultant Physician and Interventional Gastroenterologist, Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, FCPS Medicine, FCPS Gastroenterology, FRCP London, MRCP Ireland, MD Gastroenterology. Assalamu alaikum, Dr. Sahab.
1: Wa alaikum salam.
0: Thank you so much for being here and thank you so much aap yahan par aaye. So Dr. Saab, aaj basically jo hamare show ka topic hai, it's about hypertension management with lifestyle modification.
1: Ji bilkul.
0: So sabse pehle to hamare listeners ko ye bataiye ki basically jo hai wo blood pressure aur high blood pressure in dono mein kya fark hai.
1: Dekhiye, blood pressure to ek normal cheez hai na jo ki har zinda insaan ke andar maujood hai, lekin agar ye blood pressure jiski ki range 120 aur 80 absolutely normal hoti hai, लेकिन 140 से 99 तक हम कन्फेडरेशन में बॉर्डर लाइन कन्फेडरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर 140 से और 100 से ज्यादा हो जाए, अपर वाला जो होता है जिसे हम 140 कह रहा हूं मैं, ये सिस्टोलिक होता है और जो नीचे वाला होता है फिर डायस्टोलिक कहते हैं. अगर डायस्टोलिक 100 से ज्यादा हो जाए और सिस्टोलिक 140 से ज्यादा हो जाए तो पेशेंट जो है हाइपरटेंशन की लाइन में आ जाएगा और फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है इससे मजीद कितना बढ़ा हुआ है, आया 140 के बाद 150 तक है, 160 तक है, फिर फर्दर क्लासिफाई हो सकता है. लेकिन आसान तरीन अल्फाज में अगर मैं कहूंगा तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा कि 140 और 99 से ज्यादा ये हाइपरटेंशन है.
0: सही डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि बेसिकली जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसकी क्या वजूहत होती है और एक आम आदमी जो है वो इस चीज से, इस बीमारी से कैसे बच सकता है.
1: अच्छा देखिए, अगर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर की तो 90

0: music is what you want. So stay tuned to FM 100.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो।
2: हटो पीछे, भागो।
3: अहमद, हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: This program was brought to you by
5: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
0: 03111-7837. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: Radio.
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey. Radio.

Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड मैसेजेस आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं 3636 पर एंड facebook.com/rj.jasmine JZMINE वहां पे जाएं, इनबॉक्स करें एंड अपनी रिक्वेस्ट जो है आप हमें बता सकते हैं वहां पे जो भी आप सुनना चाहते हैं. सो जरी नूर ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं. आप बताइए आप कैसी हैं. जरी नूर कह रही है सज्जाद अली का कोई भी सॉन्ग लगा दीजिएगा. चलें ठीक है, डन हो गया है, बिल्कुल लगा देंगे. इससे पहले हमारे पास जो है महक का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था बहका रे सॉन्ग जो है वो प्ले कर दें शराज उपल का. सो महक इफ यू आर लिसनिंग, आई होप आप सुन रही हो, ये ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहेगा.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
5: Oh yeah!

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and हमारे पास messages आ रहे हैं. We've got a message here from नाम नहीं लिखा इन्होंने. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आरजे जैस्मिन? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. प्लीज प्ले रहीम शाह का सॉन्ग ओ पीरा. पश्तो सॉन्ग ने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन भाई नाम नहीं लिखा है किसने हमें मैसेज किया है. सो गाइस, 3:23 हो गए हैं, 4 तक आप लोगों के साथ हम मौजूद हैं. हमारे पास मारिया ने मैसेज किया था, उन्होंने जान निसार का ओएसटी रिक्वेस्ट किया था. सो इफ यू आर लिसनिंग, योर सॉन्ग इज नाउ प्लेइंग, ट्रैक इज द ओएसटी ऑफ जान निसार.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटू पीछे भागो।
2: अहमद हटू वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: लबैक अल्लाह लबैक। फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
7: 365 Genie in radio.

Jeez, now welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड इट्स 43 मिनट्स पास्ट ऑन द डायल राइट नाउ. हमें समी शेख ने मैसेज किया था, उन्होंने कहा था कि आप अपनी पसंद का कोई सॉन्ग चला दीजिएगा. सो इफ यू आर लिसनिंग, अपनी पसंद का सॉन्ग चला रही हूँ आपके लिए. सो टाइम हमारे पास कम है, मिलते हैं इस गाने के बाद. द ट्रैक इज कन्हैया आ रही है.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटू पीछे भागो।
2: अहमद हटू वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
5: FM 247 365 FM 247 365

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
3: एंड बाल फैमिली शर्लाइन उमराह पर जाएं
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
5: एंड HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार
6: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
7: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे, होशियार रहें, मोहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
8: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
9: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
11: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
12: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बआसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
0: This program is brought to you by Sarsabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja
1: and Phoenix laga aur bhool ja Phoenix laga aur bhool ja
2: and we are tele health par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
3: and
4: Tabal family mixture laaye umrah par jaye
3: and
4: HBL freedom account jahan khwab वहाँ HBL
5: एंड HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार
6: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
13: FM 24/7/365

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99% 11.99%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: सर सर नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300 0300 641 पर भेजे या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है। ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत व ज़वाबित लागू है।
4: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रूपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल।

0: साथ 100 रूपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: वाचिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: किसने कहा था पैसे बचा?

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सर सब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
3: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: एंड HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार
6: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
7: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: your location for maximum music. It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
6: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99% 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: your location for maximum music.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बआसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
1: This program is brought to you by
5: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
1: and
6: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
1: and
7: VR telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
1: and
8: Tabal family mixture laye umrah par jaye
1: and
2: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
4: and HBL Islamic, सफर हज में आपका खिदमत गुजार
1: and
9: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Mizan Bank, the premier Islamic bank
1: and
10: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
11: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
12: FM 247365

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: 100 FM।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: नेपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। नेपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
8: 100 FM।
11: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
10: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका? जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
13: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
6: वाचिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाचिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
11: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है।

0: 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.9%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
6: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
8: 11.99% 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
11: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बआसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
12: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja,
0: and
13: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
0: and
3: VR Telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye,
0: and
14: Tabal family mixture laye, umrah par jaye,
0: and HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL,
11: and HBL Islamic, सफर हज में आपका खिदमत गुजार,
0: एंड
15: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक,
0: एंड
10: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
8: 100 FM।
16: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार, एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
8: FM 100 Light.
17: us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: वो भाई क्या है ये 11.99%?
1: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट।
2: शोबे जर्मनी
3: फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
5: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
6: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका? जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
2: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरो इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
7: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: This program is brought to you by Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
1: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
2: Nasha na pareshaniyan khatam karta hai. इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: जरा बहन
1: जरा बात तो सुनो।
2: हटो पीछे, भागो।
3: अहमद हटो वहां से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: 11.99% 11.99%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
5: 11.9
8: मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां

0: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
2: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
0: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
1: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
0: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
1: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मुहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मुहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद न करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
5: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: FM 24/7 365 FM 24/7 365
7: Today's hit music.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM247365

0: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 247 365

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Acha. Now we come to run things on the road. See?

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जहर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रुजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पूर अज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
5: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

दुनिया से बेखबर जो कहना था कहने दे आंसू ये बहने दे यार बोले दे खबर बोल खोल दे हम जान भी दे देंगे तेरे कहने पे वक्त पूरा ना हो बेसब्र मेरे लफ्ज़ तुझ पे कर्ज़ ये।

जाने दे क्या ढूंढे वो लड़ते किनारे से, हर खून पे हम लोगों को जाने दे, इन लफ्जों में जहर मिलाने दे, रुसवा हूं मैं जमाने से, ये कागज कलम को बहाने दे।

बलि ये लगा कहानी मेरी सिर्फ दर्द भरी हासिल मुझे बर्तरी होने लगी हर बड़ी खुद की कमाई पैनी गड़ी वो भी बर्बरी अभी मजबूर नहीं लेकिन चली लग बड़ी आके मेरे पैर पड़ी जिंदगी थी सैर भरी सीखे हम गिर के चाहिए सबके खैर बड़ी गहरे समंदर हम लेके चले।

की तलाश में आते ख्याल खुद को रोक ले दकाश में करके तमाशे तेरा दिल को दिला से जबकि जानता हूँ खुद को मैं अच्छी तरह से कैसे हट जाता पीछे मैं अपनी जगह से कैसे छोड़ देता जीता मैं जिसकी वजह से

0: आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: FM 24/7/365

पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी

0: ने कमाल बैटरी से AGS ट्यूबलेट उठाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: facebook.com/fm247365 It's not just music, it's an addiction. FM 111

जनाब बस कभी कभी मूड करता है कोई जोक वगैरह फनी बात हो तो डॉक्टर साहब से कहते हैं कोई आदमी के डॉक्टर साहब जब से दिल का ऑपरेशन हुआ है नाचने गाने को मन करता है जी करता है कहें कहीं मैं जवान तो नहीं हो गया नहीं बेटा क्यों जवान क्यों जो दिल तुम्हें लगाया था ना वो हिजड़े का था चलो ये आगे चलते हैं एक और सॉन्ग है ये है आरजू है ये हसन रहीम साहब ने गाया है

0: Planet FM, your location for maximum music.
1: जनाब ये मैं जोक्स में फिर से सुनाता हूँ, क्योंकि जोक टूट के सुनाने में कोई मजा नहीं आ रहा। दिन भर तुम काम में लगी रहती हो, मतलब देखो काम ही काम, काम ही काम। ये नहीं कि अपने शौहर के साथ दो बातें कर लो, बीवी कह दिया अरे तुम्हारी दो बातों के चक्कर में तीन फिर रहे हैं।

0: तो नाब हो मिया ये सॉन्ग था, इसका नाम मुझे नहीं पता।
1: facebook.com/fm247365
2: FM 247 365. This is your

0: your location for maximum music.
1: आपके साथ मेरी भी यादें ताजा हो गई उस जमाने की. अच्छा कहते हैं कि सारी उम्र मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये कह देना उनकी होती है सीधे मौत, वो भी कुत्तों की वाली. बाकी घपले वाले तो मजे करते रहते हैं मगर मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिलता. खैर दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरीबॉडीज केस. हर किसी के साथ कुछ और हुआ होता है और उसमें ज्यादातर कसूर उसी का अपना होता है, या वो बेवकूफी का होता है, या वो अपने आप को कुछ ज्यादा चालाक समझते हैं, या वो समझता है कि जो ये बोल रहा है उसकी ऑपोजिट करो वही अच्छा होगा. ये कोई किसी की गारंटी नहीं हो सकती. ठीक है ना जनाब, अब आगे चलते हैं, एक और सॉन्ग आपको सुनाते हैं. ये देखिए जो ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं या मुझे कहा जा रहा है वो गाने में चलाता हूं.

कोई अटक मटक की बात है जनाब। मुस्ता हसन खान एंड जैनब फातिमा सुल्तान शाह सुल्तान एम दबक।

अच्छा एक और सॉन्ग मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपने अपने एल्बम्स का जो वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं लोग ये गाने इतनी मेहनत की है तो जी पाता है वो गाने आपको मैं सुनाता ही रहूं तो ये अगला गाना सुना प्यार का

अच्छा भाई ये गाना थोड़ा सा जो हॉरर हॉरर टाइप का है, ब्लैक आवर। होश ने हकीकी कवर लिखा था।

0: would come through my door. But this brought loneliness so far. I lay my hand unto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream I had of you?
1: 100.1 FM, your location for maximum music.
2: Somehow, I'm sure कि आपको ये जो मैं पुराने गाने और अपने नए गाने सुना रहा हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे इंशाल्लाह. जैसा कि आप जानते हैं सितंबर हैज टर्न टू अक्टूबर. दिस इज अक्टूबर 2026 और इंशाल्लाह अक्टूबर में काफी खुशखबरियां आने वाली हैं के इंतजार में हैं. उनके शौहर कभी कभी वो चाहते हैं कि वो कन्फेशन भी करते हैं. अच्छे शौहर जो होते हैं और कहता है मुझे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है बीवी. बीवी कहती
3: नहीं नहीं बेबी ऐसी बातें नहीं करते.
2: शोर कहता मुझे मुझे तुम्हें सच सच बताना है कि तुम्हारे पास से वो 5,000 रुपए जो तुम्हारी बैग में थे चोरी हुए थे वो मैंने किए थे.
3: बीवी कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं.
2: शोर कहता है अरे तुम्हारा जो गोल्ड का हार चोरी हुआ था ना वो भी मैंने किया था.
3: बीवी कहती कोई बात नहीं
2: और मैंने पड़ोसन को दिया था क्योंकि उसके साथ मेरा चक्कर था.
3: बीवी ने तो गुस्सा जब्त किया और बोला छोड़ो छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो.
2: शोर बड़ा हैरान हो रहा था कि क्या हो रहा है. और कहता है कि एक और तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसके साथ भी मेरा अफेयर था.
3: बीवी कहती कोई बात नहीं बेबी कोई बात नहीं ओके कोई बात नहीं आप बेफिक्र होकर मरो तुम्हें जहर भी मैंने ही दिया है.

0: मेमोरीज को भी भूल जाते हैं आप, आपके ब्लंडर्स भी भूले चले जाते हैं. एंड यू थिंक यू आर ऑलवेज टॉप ऑफ द वर्ल्ड. This song is, I'm not very, very familiar, but this is Azmali. Test me, examine me, test me. Azmali, young stunners and Talha Anjum, Talha Yunus featuring Bilal Ali.
1: Khud se bhi mila kare, sar utha ke chala kare. खुदा के तरीके हम नहीं समझ सकते, हम उससे क्या गिला करें. दुनिया संग दिल बनती मेरी दुश्मन, हम कम अज कम खुद से ही सुलह करें. कम बोला करें, ज्यादा सुना करें, रब देता है माफी फिर गुनाह करें. ये ताकत ठिकाने बदल सकती, कलम की ताकत आखत भी पलट देती. लिखारी जान लेवा हूँ पर लिखाई ही रोज अब जीने का सबक देती. वरना जिंदगी मौके तो कम देती, महफिलों में तो रौनक भी हमसे थी. इधर हसल करते करते पूरा दिन गया, उर्दू रैप मैं उर्दू रैप मेरे दिन क्या. फैक्स नहीं, मुझे गालिब जैसा लिखने का फैज नहीं. वो हबीब है मेरे तो मुझसे दूर क्यों.

लेकिन दिल तोड़ बिल बोर्ड पे अब दिखे शक्ल इनको, मेरा बैंक बैलेंस लगता था पिन कोड, अब सफर देख सिर्फ सिफर गिन तू। Hey, I belong here, जाने का मूड नहीं है, हेडलाइनिज्म तेरी कोई न्यूज नहीं है, क्या वो सुनते पर करते महसूस नहीं है, वादे टूटे पर टूटे असूल नहीं है।

सुलगे कटे मेरे पर फिर भी जाने कैसे उड़ते मुझे उड़ने दे टूटे जो दिल हुआ जुड़ने दे इन आंखों को खुशियों से भरने दे अल्फाज मेरे दिल में उतरने दे मंजिल तो खुश हो ठहरने पे ये घर मेरा जड़ को ना मरने दे उभरेंगे सूरज ये ढलने दे वक्त लगे खुद को बदलने में।

Assalamu alaikum, assalamu alaikum, Pakistan! Hariri! Sorry. My name is Nadeem Akhtar and you call me from love. And I listen. Sleepless night, I will say to you, happy birthday. You and me are with me, sir. 3 o'clock and 3 o'clock. Good, Allah, Allah. ऐसे लिखने में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है. अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर. जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी. कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब. मगर उससे पहले करता हूं मैं आप लोगों को वार्म अप. तो और वार्म अप करने के लिए चलता है गाना. तो आज का पहला गाना एलो पढ़ो.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको बेफिक्रिया ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको आया होगा पसंद। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर और सबसे पहले फीता काटा है हमारे प्यारे से यूसुफ भाई ने पापोश से और कह रहे हैं तमाम सुनने वालों को सलाम, FM 100 की तमाम फैमिली को सलाम, खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी चाची अरूसा गुलबानो तमाम डॉक्टर्स इमरान भाई खिताबुल्लाल गुफरान भाई और मेरे वालिद साहब को उन्होंने सलाम कहा है। और आज हमारे प्यारे से यूसुफ भाई ने एक दफा नहीं दो दो दफा मैसेज कर दिया भाई क्या बात है जबरदस्त। फरहीन शहजादी आ गई है कह रही है हबीबी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके नरीम भाई कैसे हैं आप को और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम मैं आ गई 3 बजे तक होगा खूब हल्ला तगुल्ला बिल्कुल होगा हल्ला तगुल्ला इसमें आपने होना है शामिल भरपूर तरीके से यानी के समझ रही है ना जी रहो प्यारी जी बहना थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। और हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब का मैसेज आज हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हमेशा लेट हो जाता है अगर ये वक्त पर मैसेज करें ना तो यकीन माने कि पढ़ा जाए लेकिन ये कर देते हैं वक्त से बहुत पहले। वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम सजाद अली या मेहंदी हसन की आवाज में गाना सुनना चाहेंगे अयूब आफरीदी खिताबुल्लाल समी शेख नसीम कुरैशी इमरान रियाज और आपके इंतहाई वाजिब एहतराम वालिद मोहतरम जावेद अख्तर साहब की खिदमत 1-10 में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा अल्लाह दुआगो नए ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब FB एरिया कराची से। अच्छा भाई कल के शो में कुछ फरमाइशें आ रही थी और वो फरमाइशें ऐसी नहीं जाहिर है कल का शो जो था ओल्डी गोल्डी क्लासिक था तो उसमें पॉप ट्रैक्स तो चला नहीं सकते थे मगर कुछ फरमाइशें आई थी मुझे याद नहीं आ रहा तो लिहाजा जिसको भी याद आया कि हमने कल फरमाइश की थी नदी मायने पूरी नहीं की वो आज दोबारा कर सकते हैं। तो आपको लेकर चलते हैं जनाब एक और बहुत जबरदस्त से ट्रैक की जानेब और उम्मीद करता हूं मेरे शो में फर्स्ट टाइम चल रहा है कि आप सबको पसंद आएगा एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। जीना मेरा एक बहुत जबरदस्त बैंड था पाकिस्तान का, शराब के नाम से, ये उनका ट्रैक है जो कि रीमेक हुआ है, कवर किया गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाया जाए और उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रैक पसंद आया होगा। मैसेजेस तो आप कर रहे हैं 3636 पर, लेकिन सवाल जो है वो मैंने आपसे अभी तक किया नहीं। ख्वातीन को अक्सर पता होता है कि भाई जो शौहर साहब है वो इस वक्त कहाँ है, ऑफिस में, वहां से आ गए, बस एक घंटे की आधे घंटे की देरी हो जाए तो हलचल सी मच जाती है, फौरन फोन आ जाता है, कहाँ है आप, कब तक आएंगे, क्यों आएंगे, वहां क्यों है, हजारों सवाल जवाब। ये आप लोग सब जो शादीशुदा लोग हैं इससे भुगत रहे होंगे, और मर्द हजरात जो हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, दोस्तों के साथ बैठे होंगे, कहेंगे जी मैं ऑफिस में हूं इस वक्त, बहुत बिजी हूं, या कहीं और होंगे। तो बीवी को पता ही नहीं होता शौहर साहब कहां है, जो कह दिया वही कह दिया। लेकिन एक औरत ऐसी है जिसको ये पता होता है, हमेशा पता होता है कि उसका शौहर रात को कहां होता है, बताएं वो कौन सी। आसान सी पहेली है और उम्मीद करता हूं कि आप इसका देंगे जवाब। हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर आ गई हैं, कह रही है सलाम, कैसे हैं वाले साहब और संजू के लिए बहुत सारी दुआएं और तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई सलाम के बाद कह रहे हैं नदीम भाई, एक फरमाइश आ गई है, ये हैं असलम सागर साहब। असलम साहब ने सिर्फ और सिर्फ फरमाइश की है। असलम भाई आपकी फरमाइश को हम जरूर पूरा करेंगे। मैसेजेस आपके आ रहे हैं, सराह खोबर है, लेकिन अभी आपको एक बहुत जबरदस्त से ट्रैक की जानिब में लेके जा रहा हूं। ये ट्रैक है फरंगी ट्रैक और उम्मीद करता हूं बहुत से लोगों को ये पसंद आएगा, अपने दौर का बेहतरीन ट्रैक है।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। ब्यूटीफुल ट्रैक, टार्जन बॉय इस ट्रैक का नाम था और अपने दौर का बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ट्रैक जनाब। और आई होप कि उल्डी गोल्डी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अच्छा जनाब, कल के शो में एक मैसेज और भी था जो कि साहबजादा साहब ने किया था और उस पर मैंने कुछ चर्चा भी करनी थी, मगर कल क्योंकि वक्त की कमी के बायस साहबजादा साहब आपका वो मैसेज नहीं पढ़ सके। किस्सा था, बड़ा जबरदस्त किस्सा था, अल्लाह ताला की कुदरत है उसमें। वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो एक वाकया जो है वो बयान किया है हमारे प्यारे से साहबजादा साहब ने, इनको याद था। तो अखबार में, जो पाकिस्तान का बहुत ही मकबूल अखबार किसी जमाने में होता था, उस अखबार में एक हेडलाइन आई थी कि मस्कत में एक फैमिली रहती है और उनके वालिदैन पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को दादा दादी के पास भेज दिया। वो दादा दादी के पास आए रहे, उसके बाद दादा दादी ने उनको मस्कत के लिए फ्लाइट पर रवाना कर दिया। बच्चे जो है पीआईए की फ्लाइट थी, ऑन बोर्ड कर देते हैं जब बच्चों के पेरेंट्स जो है मस्कत में रहते हैं। मस्कत के करीब एयरपोर्ट के पास ही एक बहुत खतरनाक किस्म का तूफान आता है जो कि जहाज को हिट करता है, जिससे जहाज का जो इमरजेंसी डोर है जिसके साथ बच्चे बैठे हुए थे, उनकी सीट होती है, वो खुल जाता है और बच्चे जो है वो जहाज से बाहर, यानी कि समझ रहे ना, क्योंकि वो इमरजेंसी डोर के पास ही थे। और जब वो जहाज से बाहर गिरते हैं तो जाकर समंदर में गिर जाते हैं। समंदर में मच्छेरे जो हैं वो उनको पकड़ लेते हैं, बचा लेते हैं। फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से कांटेक्ट किया जाता है और बच्चे जो हैं वो जिंदा सलामत वालिदैन के हवाले कर दिए जाते हैं। वाह वाह वाह वाह, ये है अल्लाह ताला की कुदरत। वरना ये जहाज, हवाई जहाज के जो हादसात होते हैं, इनमें बहुत मुश्किल होता है कि कोई बचे। संजू क्यों नहीं आ रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दिल उदास हो रहा है, आ जाओ संजू, जरीन नूर कह रही हैं। हो सकता है जरीन नूर के कहने से आ जाए भाई, हम तो कब से कह रहे हैं, हर शो में कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है जरीन नूर के संजू कहीं बिजी हों बहुत ज्यादा हैं जी। और आज जनाब एक और मैसेज आ गया है, कह रही है डैशिंग सलाम टू ऑल मोहल्लास, मैं उमरे के लिए गई हुई थी और 25 को वापस आए हूं और वहां पर जनाब इन्होंने बहुत सारी दुआएं की हैं मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी और एफएम 100 की तमाम फैमिली के लिए भी। खाने काबा के सामने खड़े होकर माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वहां पर हम सबको याद रखा और हम सबकी भी दुआएं आपके साथ हैं। ये है जनाब कायनात अरसलान, उनका मैसेज था और हमारी भी नेक दुआएं हमेशा आपके साथ रही हैं। और जनाब क्या बात है, आज नालो नाल आए हैं भाई, पुराना वक्त याद आ गया। समी भी आ गए हैं, कह रहे हैं सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप, सलाम टू गुफरान भाई एंड ऑल लिसनर्स। और अच्छा सा सॉन्ग प्ले किया है नदीम भाई, बट इस सॉन्ग का वीडियो वर्जन नहीं, ऑडियो वर्जन में साउंड अच्छा आता है। नहीं नहीं भाई। और कायनात को उन्होंने कहा है कि उमरा बहुत बहुत मुबारक हो। इत्तफाक देखें, आज मैं भी आ गया, मैंने पहले ही आपकी मैसेज से पहले ही कह दिया है, तुम दोनों का कोई ना कोई है सिलसिला, पहले भी मैं कहता था। लहर जी इस तरह तो होता है, इस तरह के काम है। अच्छा आपने जो फरमाइश की आपसे पहले जो है असलम सागर साहब ने फरमाइश कर दी थी अली जफर की आवाज की, और अली जफर की आवाज जनाब हमने शामिल करनी है।
تو علی ظفر کی آواز جناب سنیے آپ.

वेलकम बैक है ये सुनियो आप सबको, जालिम नजरों से दुमना मुझके देखो मर जाऊंगा, जाने जाना मर जाऊंगा। ब्यूटीफुल ट्रैक है, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। सबसे ज्यादा कह रहे हैं नदीम भाई, मेरा पंजाबी का मैसेज जो आपकी समझ नहीं आया था वो था, वो मुझे अपने पास नहीं बुलाती या मेरे पास नहीं आती, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ इसके के असी किसी होर नु फड़ लई। अब इसको मैं पंजाबी में तर्जुमा करके पढ़ूंगा भाई, ठीक है ना। तो वो जो मैसेज था वो ये था, ओ मैनू कोल नहीं बुलांदी या मेरे कोल नहीं आंदी, भाई मैं की कर सकना वा। सिर्फ एना असी किसी होर नु फड़ लईए। साहिबजादा साहब हो गया ना, ओके ठीक, मैंने तर्जुमा कर दिया उर्दू पंजाबी में, तो ये समझे कि मैंने वही वाला मैसेज पढ़ दिया। और जरीन उर कह रही है मुझे लग रहा है मोबाइल है वही, मुझे लग रहा है मोबाइल है। जरीन नूर ये आगे क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आया मेरी बहन, जरा थोड़ा सा समझाइए, यानी कि समझ रही है ना। और समी भाई फुल फॉर्म में आ गया है और कहते हैं कि फिर कोई शादी वाला सॉन्ग भाई हो जाए तो डेडिकेट करते हैं। हाँ भाई बिल्कुल होगा, अरे शादी वाला सॉन्ग आपको नहीं दिक्कत करेंगे तो किसको करेंगे। हाँ भाई। और कह रहे हैं कि बस एक महीने है शादी में, उसके बाद आपका भाई भी सिंगल से मिंगल हो जाएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ उम्र कैद हो जाएगी एक महीने बाद। और गाना इनको अच्छा लगा भाई, जालिम नजरों से अच्छा भाई। और आगे बढ़ते हैं, इस्फहानी साहब प्राइवेट एयरलाइन चलाते थे जिसका नाम था ओरिएंट एयरवेज, बाद में ये एयरलाइन पाकिस्तान को गिफ्ट कर दी थी जिसका नाम बदलकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी के रख दिया गया। साहिबजादा साहब यार ये दो दिन से आप यही मैसेज करें, आखिरकार मैंने पढ़ दिया मगर क्यों, यानी कि समझ रहे ना। आयशा मेमन आ गई हैं, कह रही है अरूसा आप ही के लिए बहुत सारी दुआएं। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, आयशा मेमन आई है और कह रही है अरूसा आप ही के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, मर्ज से निजात हो, आमीन सुमामीन। अरूसा आप ही यानी कि अरूसा मेमन हमारी प्यारी सी बहन, आप ये मेमन कजन्स में से आयशा भी आ गई हैं आज, और कल के ही शो में हमने तमाम अपने लिसनर से दरख्वास्त की थी कि हमारी प्यारी सी बहन अरूसा मेमन के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था मेरा ख्याल, और इसका इलाज है, और इंशाअल्लाह ताला ये मेरी प्यारी सी बहन 100% सही हो जाएगी। देखिए भाई दुआ जो है ना पता नहीं किसकी लग जाए, ठीक है ना, तो लिहाजा दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई हमारे रेगुलर लिसनर्स में तो स्पेशली यार कि वो अगर इस चीज को कहते हैं कि जी कि आप दुआ करवाइएगा जरूर, तो सिर्फ इतना ही कहते हैं हम, मैं कहता हूं आपको कि यार दुआ कर लें, दिल में दुआ कर लें, नाम लेकर दुआ कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, और ये हमारी प्यारी सी बहन अरूसा मेमन जो है अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमामीन। हाय रब्बा रा रा री री रा रा रा रा रा री री रा रा। और जनाब और आपके एक मैसेज और पढ़ते हैं, उसके बाद आपको एक और अच्छे से गाने की जानिब लेके जाएंगे। हमारी प्यारी सी फरीन शहजादी बहना कह रही हैं जबरदस्त पंजाबी जुबान में बोले आप, सुनो ट्रांसलेशन कर लेता हूँ, बस अभी एक दुआ करो, एक ड्रामा जो है वो डबिंग के हवाले से आपके भाई की आवाज आएगी। चाची आप आ गई हैं,
द ग्रेट चाची। और मेरी हंसी इस वजह से हुई, आई मुझे हंसी कि चाची हमेशा की तरह उन्होंने जवाब जो है दुरुस्त दे दिया है। चाची अब मैं लाऊंगा सवाल, अभी तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ सवाल। अब चाची आना शुरू हो गई है ना, तो मुश्किल मुश्किल सवाल करने में मजा भी आएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा भाई, आज मेरा मूड हो रहा है अंग्रेजी एक गाना सुनने का, तो आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। सही, तो बहुत दिनों के बाद सुनूंगा, मेरा मोस्ट फेवरेट है एडम, मरून फाइव इसका बैंड है, और इसके साथ कार्डी बी ने एक ट्रैक जो है वो गाया है, और अपने दौर में बहुत पॉपुलर हुआ था, और स्पेशली डेडिकेटेड टू वुमेन्स, जो खवातीन हैं जो काम करती हैं और जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में हैं और तरक्की कर रही हैं, शाना बशाना चल रही हैं, उन सबको डेडिकेट करूंगा। एलो फड़ो।

Welcome back, girls like you. Beautiful track. Hopefully, आपको शायद पसंद आया हो, लेकिन जो English song lovers हैं, उनको तो 100% पसंद आया होएगा. Messages आपके आ रहे हैं 3636 पर, और अमीन कह रहे हैं सलाम. अमीन असलम लिखा हुआ है या अमीन सलाम लिखा हुआ है? ये मेरा ख्याल है अमीन असलम साहब. उन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा है. भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम. और जनाब साहब ज़ादा साहब ने जो है कुछ और भी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद और मोहम्मद अली जिना, अच्छा जनाब एक किस्सा है और उसको हम जरूर पढ़ेंगे, आज के ही शो में पढ़ देंगे साहिबजादा साहब, थोड़ा इंतजार कीजिए. पहेली का जवाब जो आपने पूछा है, जरीन नूर कह रही हैं पहेली क्या थी, किस औरत को हमेशा ये पता होता है कि उसका शौहर रात को कहाँ होता है, ये तो इसका जवाब जो आपने दिया है वो हमने गुप्त रखा है, महफूज कर लिया है. मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर, डोंट वरी डोंट वरी. नवेद भाई आ गए हैं भाई, कह रहे नदीम भाई आपका छोटा भाई सुन रहा है और शकील साहब भी सुन रहे हैं, भाई क्या बात है, और एक गाने की फरमाइश भी कर दी. ओके ठेक जनाब, ओके ठेक चाची, आपने जवाब 100% दुरुस्त दिया है. और क्या कह रही हैं नौरीन, को क्या कहना चाह रही हैं आप? हमारी नौरीन भैना तो अभी आई नहीं, यानी कि समझ रही है ना आप, सभी फुल टाइम एक्टिव है. गर्ल्स लाइक यू सॉन्ग प्ले करेंगे आप, मुझे पता था यही सॉन्ग होगा, यानी कि बड़े शरारती हो, बड़े अकलमंद हो गए हो, हैं जी ते हैं जी. समरीन बलोच भी आ गई है आज, नीली आंखों वाली कह रही है नदीम आपको और सबको दुआ और सलाम, चाची को खुसूसी तौर पर मेरा सलाम कहिएगा. समरीन आपका सलाम जो है वो चाची तक पहुंच गया, डोंट वरी डोंट वरी. और कायनात कह रही है कि मैंने समी के लिए वहां पर बहुत सारी दुआएं की थी, बस तुम्हारी दुआएं रंग ले आई हैं, अगले महीने ये रुख्सत हो जाएंगे और अच्छे नसीब के लिए भी दुआएं की. आमीन सुम आमीन, अल्लाह खुश रखे और माशाल्लाह माशाल्लाह. और टाटा भी कह दिया उन्होंने, जीती रहे मुस्कुराती रहे, बहुत बहुत शुक्रिया. हाय हाय, एक मैसेज और पढ़ेंगे और उसके बाद हम साहिबजादा के किस्से की जानिब जाएंगे. सलाम सुने हो तमाम प्यारे प्यारे लिसनर्स को भी सलाम, और सुने हो आजकल संजीदा आपके शो से गायब है, जबकि वो अयास के शो में तो रोज आती है. सलीम एमन साहब कह रहे हैं, अब बात दरअसल ये है कि भाई हमारी जानिब से हर अपने प्यारे से लिसनर्स को एक इज्जत मिलती है.

वेलकम बैक सुनियो, इसके साथ ही एक और फरमाइश हमारे शकील साहब सुन रहे हैं, छोटे भाई नवीद सुन रहे हैं, सलीम मेमन की जानब से उनको गाना डेडिकेट करना है, और जनाब हमारे प्यारे से जो अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब हैं उनकी जानब से डेडिकेट किसको करना है, आप सबको सजाद अली की आवाज है, अल्लाह फड़ो।

वेलकम बैक आएंगे बस भाई बस सजाद अली का ट्रैक और इसी ट्रैक की फरमाइश थी और होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। और जनाब जरीन नूर आपने जो जवाब दिया है आपने बिल्कुल बहुत करीब आ चुकी हैं और आपने सवालिया मैसेज किया है तो उसका जवाब मैं यही दूंगा कि आप बहुत करीब आ चुकी हैं पहेली के, बस थोड़ा सा जहन पर और जोर दें। तो जो आपने पहेली का जवाब लिखा है ना उसके साथ एक लफ्ज का इजाफा है तो उसका जवाब हो जाएगा। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि मैंने जो पहेली पूछी है कि किस औरत को हमेशा ये पता होता है कि उसका शौहर रात को कहां होता है। चाची बिल्कुल सही जवाब दिया था भाई। चाची का एक मैसेज आया है और चाची ने ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर और कायदे आजम के हवाले से एक बहुत खूबसूरत सा वाकया बयान किया तो चाची ने भी कोलंबस के हवाले से जो है एक वाकया है। कोलंबस ने क्या दरियाफ्त किया था सबसे पहले तो ये बताइएगा, ठीक है ना? कोलंबस के नाम से क्या चीज जुड़ी हुई है? उसने दरियाफ्त किया था कुछ, तारीख में है ये। इसका जवाब देंगे ना तो उसके बाद जो है मैं चाची का वाकया बयान करूंगा तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा सुनने में। तो जनाब आए हाय सलीम एहन भाई, देखें आपसे आपके मैसेज से पहले ही हमने ट्रैक डेडिकेट कर दिया था। कह रहे सुने आपके छोटे भाई नावेद से आज मुलाकात हुई है, उनकी तबीयत खराब है, उन्हें ये नहीं पता था उनको बुखार है, उन्होंने आपको सलाम भी कहा है। अच्छा उनका मैसेज आ गया था, आपने भी पैगाम पहुंचा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बोला था कि FM के बाबा जी से कहना कि मेरे लिए दुआ करें। भाई हमारे नावेद भैया के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे भाई। डॉक्टर के पास भी चले जाना भाई, कंजूसी नहीं करना, दुआ के सहारे ही रुके हों। दुआ तो उनके लिए की जाती है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, हरे के लिए की जाती है। और आगे बढ़ते हैं जनाब, समी क्या कह रहे हैं भाई? वाह वाह, कह रहे जजाक अल्लाह कहना, उसका जवाब दिया। अब तो खैर वो जा चुकी होंगी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो कोलंबस के हवाले से मैंने आपसे जो बात पूछी है उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो क्या बात है भाई। वो कह रहे हैं शुक्रिया सॉन्ग के लिए। यार सॉन्ग के लिए शुक्रिया नहीं, एक गाना मैं अपनी जानिब से जो है समी को डेडिकेट करूंगा क्योंकि अभी ये दूल्हा होने वाला दूल्हा। अच्छा एक और भी है हमारे, उनका भी नाम बताऊंगा मैं, इनकी बात पक्की हुई है और उनकी भी शादी दिसंबर में है, न्याजी साहब है हमारे। तो इन दोनों को ट्रैक ये डेडिकेट करूंगा, समी को भी और न्याजी साहब को भी।

વેલકમ બેક છલા આયા યુકે તો સભી કહે રહે હૈ કે આપકે શો સે એસે સોંગ્સ અચ્છે લગને લગે હૈ હાય હાય હાય ભાઈ સબસે પહેલે આપને હી ફરમાઈશ કી થી દિલ કિથે ખડાઈ યાર ક્યા જબરદસ્ત ગાના હૈ યાર और हमारे पाकिस्तान की तमाम जुबानें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत बहुत प्यारी हैं चाहे वो सिंधी हो चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो सराइकी हो चाहे वो पख्तून जुबान हो चाहे वो बलोची हो तो तमाम जुबानें हमारी जितनी भी हैं यकीन मानिए मैं अपने मतलब दिल की बात आपसे कर रहा हूं कि मुझे तमाम जुबानों से बे इंतहा मोहब्बत है कल्चर से मोहब्बत है और मैं कई दफा ये बात अपने शो में कर चुका हूं कि पाकिस्तान का जो फोक म्यूजिक है इसका एक अपना मजा है सुनने के बाद बहुत सारे पश्तों के गाने बेतहाशा मैं सुनता हूं और आप यकीन मानिए कि समझ में नहीं आता सारा मुझे समझ नहीं आ रहा होता कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होती हैं कुछ कुछ अल्फाज समझ में आ रहे होते हैं और जो गाना मुझे बहुत पसंद होता है तो फिर वो मैं समझने की कोशिश भी करता हूं कि क्या शायरी है जैसे पदे बाड़ा के उबो गड़े वड़े वीना तो समझ तो नहीं आ रहा होता लेकिन म्यूजिक दिल में उतरने वाला होता है मतलब फोक म्यूजिक जो है इसी तरह पंजाब के अगर आप गाने देखें तो क्या बात है जो फोक है इसी तरह बलूचिस्तान का जो फोक है ओए होए एक गाना तो मुझे बराहवी गाना हो या बलूची गाना हो उनका भी ये अपना एक अरे बरोही भाई याद आगे इसी बात पर यार बरोही भाई क्या हाल है आपके सिकंदर भाई कैसा है सब ठीक ठाक मुझे पता है आप सिर्फ फोन करते थे मैसेज कर नहीं सकते थे मगर आप सब लोग हमारे दिलों में हैं जनाब शहाब अंकल आप भी उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे लव यू लव यू लव यू और मेरे बहुत सारे जो सिक्योरिटी गार्ड भाई हैं वो सुन रहे होते हैं उनमें हमारे प्यारे प्यारे से सराइकी भाई भी हैं पख्तून भाई भी हैं पंजाबी भी हैं ठीक है ना तो ये ज्यादातर टेलीफोन करते थे लेकिन अब वो फोन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये ना समझिएगा कि आप लोगों की शिरकत नहीं है आप लोग बिल्कुल हमारे साथ हैं यानी कि समझ रहे हैं ना आप तो खैर जी फोक कल्चर की बात हो रही थी गानों की बात हो रही थी वो तो अपना एक मजा है ही है उसके साथ साथ ट्रेडिशन भी जो है उसकी भी अपनी बात है जवाब आ गया जनाब चाची ने कोलंबस के हवाले से कोई बात की थी तो मैंने कहा था कि कोलंबस जा रहा था कहीं और कोलंबस ने क्या दरियाफ्त किया था डिस्कवर किया था इसके हवाले से मैंने पूछा तो हमारे साहबजादा साहब इस मामले में पेश होते हैं माशाल्लाह से तो उन्होंने फौरन जवाब दे दिया है कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था तो चाची ने बताया कि कोलंबस जब डिस्कवरी के लिए जा रहा था तो उसको कहा कि कहां जा रहे हो बेगम ने कहा यार क्यों बस मैं काम से जा रहा हूं कब तक आओगे कुछ कह नहीं सकता अच्छा जब भी आओगे ना आते हुए धनिया और मिर्ची लेते आना अच्छा अमेरिका डिस्कवर कोलंबस ने कैसे किया था आपको एक बड़ी मजेदार किस्म की बात बताता हूं कि कोलंबस जो है वो अमेरिका डिस्कवर करने के लिए नहीं निकला था अब ये साहबजादा से सिर्फ साहबजादा से सवाल है आपसे नहीं है वो आप बताएंगे कि वो क्या डिस्कवर करने निकला था और डिस्कवर हो गया अमेरिका यानी कि समझ रहे हैं ना आप और जनाब चला आया यूके तू मेरी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर जीती रहो मुस्कुराती रहो अरे नहीं मेरी बहना मैं आपके मैसेज जो है ना वो गुप्त इसलिए रख रहा हूँ कि अगर मैंने उसमें थोड़ा सा भी कोई इशारा दे दिया ना पढ़ लिया तो सबको पता चल जाएगा इसका जवाब क्या है क्योंकि अभी तक माँ सिवाय चाची के किसी ने भी इस सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दिया चाची तुसी ग्रेट हो हाँ चाची आई एम सॉरी गुजराती मेमनी लेकिन चाची गुजराती और मेमनी में गाने बहुत कम बने हुए हैं खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में
तो चाची का हमने आपको एक लतीफा भी सुना दिया और गुजराती के हवाले से भी चाची ने जो मैं जुबानों की बातें कर रहा था। अबे गुजराती, अच्छा ये गुजराती का भी अपना एक वो है, कल्चर है और बड़ा खूबसूरत जबरदस्त कल्चर है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत मिनोरिटी में है ये, सो दैट्स वाई इतना ज्यादा इम्बोज नहीं है इनका कल्चर। लेकिन जितना रिच कल्चर गुजरात का है, क्या बात है। और इनके भी फूड, इनके भी ड्रेसेस जो है, जैसे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के और बलूचिस्तान के, सिंध के जो ड्रेसेस हैं, खाना पीना है, जुबान है, म्यूजिक है, इसकी अपनी एक अपने रंग है, खूबसूरती है। इसी तरह ये भी चाची आप सही कह रही हैं, गुजरात का भी है, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान में मिनोरिटी में है बहुत ज्यादा। हाँ अलबत्ता जो है हिंदुस्तान में ये मेजॉरिटी में है, तो इस वजह से ये इसको उस तरह शामिल नहीं किया जा सकता जैसे हमारे इन चार सूबों का सिलसिलाकार है। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा भाई, एक ट्रैक की जानिब मैं लेकर जा रहा हूँ आपको, और मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर की जानिब से हम संजू को भी एक बहुत प्यारा सा ट्रैक डेडिकेट करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं अपनी पसंद का ट्रैक चला रहा हूँ, और ये ट्रैक जो है ये आपको मैं 2-3 दफा पहले भी सुना चुका हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों वो ये ट्रैक तो मुझे पहले ही पसंद था। ये शजर फखर का गाया हुआ ट्रैक है, उनके बैंड का ट्रैक था, मगर अब फखर ने जो है, फखर अब्बास ने इसको सोलो दोबारा इसको रिमिक्स किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आ जाएगा, बार बार सुनाऊंगा। तो एल्लो फड़ो, ये मेरी जानिब से आप सबके लिए।

वेलकम बैक कहेंगे सुनो हाय हाय चला हूँ अपनी राहों में गुम ब्यूटीफुल ट्रैक मुझे बड़ा पसंद है भाई आपको पता नहीं पसंद आया नहीं आया इस तरह तो होता है इस तरह के गांवों में शिवदास फिरते हुए सर्दियों की शामों में बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जाने आए मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर एक दो तीन इतने सारे मैसेजेस कर दिए अच्छा मैं आपको इशारा देता हूँ जरीन नूर को और मैसेज नहीं करना आप बहुत करीब हैं जो आपने पहले मैसेज किया था ना जिस पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि आपने तकरीबन दुरुस्त बता दिया है उसमें एक लफ्ज है उसमें एक इजाफा करना है बस तो जवाब आ जाएगा यानी कि समझ रही है ना सलाम भाई आपके सवाल का जवाब है ओके आपका जवाब भी जो है वो मैंने महफूज किया है ये है नासिर खान साहब नासिर भाई आप भी बहुत करीब हैं दुरुस्त जवाब नहीं है आपका मगर आप भी बहुत करीब हैं जिस तरह हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर बहुत करीब थी आप भी हैं अच्छा जी साहबजादा साहब ने बता दिया मैं कोलंबस के हवाले से कहा उन्होंने साहबजादा साहब ने बताया जी को डिस्कवर के लिए निकला था अमेरिका को डिस्कवर किया था उसने ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है तो मैंने ये पूछा कि वो सब्जी तो लेकर आया नहीं अपनी बीवी के लिए अमेरिका डिस्कवर करके ले आया था तो लेकिन ये अमेरिका ये इत्तफाकन डिस्कवर हुआ था उससे हकीकत में दुरुस्त जवाब दे दिया जो कि सिर्फ साहबजादा साहब से मैंने किया था और वो बेसिकली तलाश करने जो निकला था वो एक इंडिया के शॉर्ट रूट को जो है वो तलाश करने के लिए निकला था मगर भटकते इधर उधर होते होते होते अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका डिस्कवर हो गया तो ये थी सूरत हाल अच्छा साहबजादा साहब से एक और सवाल है वो सोच रहे होंगे यार नदीम भाई मुझसे ही सवाल कर रहे हैं तो चलो अमेरिका जो उसने डिस्कवर किया वो अटलांटिक ओशन से किया था या पैसिफिक ओशन से किया था ये भी बताइएगा आप कोलंबस के हवाले से देखें सवाल जवाब हम दोनों का चल रहा है और आप लोगों को खामखा हमें नॉलेज मिल रही है तो साहबजादा साहब ये भी बताइएगा ये तो आपने बता दिया दुरुस्त बताया बिल्कुल कि इंडिया के शॉर्ट रूट को वो तलाश करते हुए निकला था बट ये बताइए कि वो अटलांटिक ओशन की जानिब से उसने अमेरिका जो है डिस्कवर किया था या पैसिफिक ओशन की जानिब से चला हूँ अपनी राहों में गुम अब्बास भाई भी आ गए हैं जनाब अब्बास भाई आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे हम मगर उससे पहले हमारी सी शहजादी सी बहना जरीन नूर जो है ना उसने इतने सारे मैसेजेस कर दिए तो अब उनकी जानिब से संजू को एक गाना डेडिकेट करना तो बनता है ना तो संजू आपके लिए आई लव फड़ो

0: ए, वेलकम बैक।
1: बहुत जबरदस्त ट्रैक था, मोड चेंज कर दिया भाई। जबरदस्त नासिर खान साहब, आपने फर्स्ट टाइम मैसेज किया हमें, ये जरूर बताइएगा ताकि हम याद रखें भाई कि नासिर भाई ने हमें मैसेज किया था भाई। अब्बास भाई के मैसेजेस हम पढ़ेंगे। अच्छा भाई, आपने अब्बास भाई कुछ कुछ दुरुस्त जवाब दिए है, मैं समझ सकता हूँ। आपसे जैसे भी हो सकता है ना, आप मैसेज भेजें मुझे, आपका ही पढ़ देगा, डोंट वरी। यानी कि समझ रहे हैं ना आप, और आपने तकरीबन दुरुस्त जवाब दिया है। अब मैं समझ गया हूँ, आपने दुरुस्त जवाब दिया है। जैसे मर्जी आप मैसेज कर दें, लिख कर करें, जैसे जवाब दिया ना आपने इस तरीके से कीजिए मुझे मैसेज। सुने हो, डोंट वरी, आपका भाई जो है ना सब पढ़ देता है। हाई सो स्वीट मेरी प्यारी सी जरीन नूर बहन कह रही है थैंक यू सॉन्ग के लिए, जीती रहो मुस्कुराती रहो। और जनाब अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब भी आ गए हैं। आपके सवाल का जवाब लगता है जब भी आप मेरे मैसेज को प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहे हैं, बंदे नाचीज को सच्चे दिल से माफ कर दीजिएगा, पेशगी शुक्रिया। अच्छा, जवाब दिया है मैंने, वो पढ़ा नहीं है भाई। आपके सवाल का जवाब है अमेरिका इजाद किया था, ये इन्होंने पहले बता दिया भाई, साहबजादा से पहले। और अरूसा मेमन बहन को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहत कामला अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब। तो ये तो अच्छी बात है, मुझे तो आपके कॉपी पेस्ट मैसेज आते थे, मैं समझता था कि आप बस वही एक मैसेज आपका आता था, क्या नाम है, सलाम दुआ का, अलीमुद्दीन साहब आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद कुछ नाम होते थे, फरमाइश होती थी, दैट्स ऑल, और दुआएं। और उसके बाद दूसरा मैसेज जो आपका आता था, जब मैं मैसेज पढ़ देता था तो शुक्रिया का, मैं समझा कि शुक्रिया का ही होगा, मगर आपने तो अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया जबरदस्त। और शुक्रिया का भी मैसेज आ चुका था वैसे, उसके बाद इन्होंने ये किया। तो सज्जाद अली की आवाज में सुनाया तो था गाना भी, लेकिन हम आपको एक और सुना देंगे अलीमुद्दीन साहब, आप फिक्र ना करिए, बिल्कुल फिक्र ना करें। हैं जी, ते हैं जी, और कह रहे हैं भाई शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कहा उन्होंने अब्बास भाई ने दिल की गहराइयों से। हाय हाय साहिबजादा साहब, अटलांटिक ओशन की तरफ से किया था, लॉजिकली इंडिया का पुराना रूट पैसिफिक की जानिब से था, साहिबजादा साहब कह रहे हैं। कोलंबस का ताल्लुक कौन से मुल्क से था, कौन से मुल्क से गया था वो ये तलाश करने। आज कोलंबस के गिर्द ही घुमाता रहूंगा मैं आपको। ये तो आपने दुरुस्त बताया, अटलांटिक ओशन से ही गया था वो। और आप लोगों को मैं अभी इसके हवाले से ना बड़ी मजेदार किस्म की बातें बताऊंगा, कोलंबस के सफर के हवाले से। पहले जरा साहबजादा साहब से थोड़ा सा सवालों जवाब होने दे। अच्छा भाई, बिल्कुल चाची ने भी इस कोलंबस के हवाले से बता दिया कि वो धनिया और मिर्चे ले आया था। ये नहीं, वो तो खैर लतीफा था, और चाची ने भी सेम टू सेम वही वाली बात बताई है कि वो रूट के लिए गया था, बेहतर रूट के लिए। और जब वो वहां पर पहुंचा तो रेड इंडियंस थे अमेरिका, जब उस वहां पर पहुंचा तो। और अटलांटिक ओशन के हवाले से भी इन्होंने बता दिया। चाची आपके सारी नॉलेज चाची के पास है भाई। वो कौन कहता था कि हमारी प्यारी सी चाची इंसाइक्लोपीडिया है, द ग्रेट चाची। किस मुल्क से ताल्लुक था ये भी बताइए। चले चाची, अब आप भी कूद पड़ी हैं इस बात में, तो आप भी बताइए। हैं जी, चाची ने ये भी बता दिया। और वो कहां से गया था, मतलब अपने मुल्क से ही गया था, ये भी मतलब पूछना है ना भाई। यार अजब आप लोग भी सोच रहे होंगे नदीम भाई कोलंबस कोलंबस किए जा रहे हैं भाई, क्या बात हो गई है। अच्छा एक गाना है मैं जरा उसको सुन लूं, ये वही वाला गाना है क्योंकि गानों के बोल भी एक तरह के ही होते हैं।

खैर वो मैं गाना चेक कर रहा था तो वो ये वाला भी गाना बड़ा जबरदस्त है। तो हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ जो है वो आज गैर हाजिर है, तो उनको भी हम याद करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे और एक गाना भी डेडिकेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो गाना मैं ढूंढ रहा हूं अपनी बहन के लिए। अच्छा फिलहाल मैं आपको ना एक इंग्लिश गाने की जानिब लेके जा रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश सॉन्ग लवर्स जो हैं वो भी वंस अपॉन अ टाइम जो है मेरे शोज में ऐसे भी लिसनर्स थे बहुत प्यारे प्यारे से कि जो इंग्लिश गाने भी सुनते थे, तो मैं अक्सर जो है वो इंग्लिश गाने जो है नए पुराने वो शो में शामिल एक आध जरूर करता था। तो काफी अरसा से जो इंग्लिश गानों का इंग्लिश ट्रैक्स का फुकदान रहा है मेरे शो में, तो अब मैं कोई ना कोई अच्छा सा गाना जो है वो इस पर भी मैं अब दोबारा से आ गया हूँ और रिसर्च करता रहता हूँ, तो अच्छा कोई गाना मुझे लगता है तो वो मैं आप लोगों की समातों तक जरूर पहुंचाता हूँ। तो एक और जो है ट्रैक मैं आप लोगों को आज सुना रहा हूँ, ये भी टॉप चार्ट्स पे जा रहा है, जरा सुनिए और बताइएगा कैसा लगा, जो स्पेशली इंग्लिश सॉन्ग लवर्स हैं।

웰컴 백 행기소녀 दोनों गाने अच्छे होंगे. मैसेजेस आप क्या रहे कि एच एस पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर. और मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं और जनाब साहिबजादे साहब कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ यूरोप कॉल्ड स्कैनिवेशन स्कैनिवियन. दिस इज द चैलेंज टू ऑल लिसनर्स. लो जी आपने सवाल कर दिया. मैंने जो सवाल किया उसका जवाब ही नहीं दिया आपने. फिलहाल मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगा. जाहिर है अगर मैं सवालात कर रहा हूं एवं तो उसका जवाब भी तो यानी कि समझ रहे ना आना चाहिए. और हमारी प्यारी सी चाची ने बड़ा मजेदार किस्म का जवाब दिया. चाची ने भी तमाम चीजें बता दी थी कि भाई कोलंबस के बारे में बताया, सब्जी के बारे में बताया, फिर अमेरिका के बारे में बताया कैसे डिस्कवर किया, किस रूट से गया, क्या डिस्कवर करने के लिए गया था और क्या डिस्कवर कर लिया, ये भी चाची ने बता दिया. फिर मैंने पूछा कि वो अटलांटिक ओशन से गया था पैसिफिक से. फिर मैंने पूछा कि वो कौन सी कंट्री से गया था. इसका बड़ा अच्छा सा जवाब आया है कि चाची ने बोली मेरे वो पुप्पो का बेटा है जो मैं तुम्हें सब बता दूं. और लेकिन चाची ने एक सवाल भी कर दिया है और पीआईए के हवाले से किया है कि पीआईए की पहली परवाज कौन सी थी बताइए आंसर. मैं आपको चाची ने वैसे इसका थोड़ा सा हवाला दे दिया है लेकिन मैं चाची आपको इसकी तफसील बताऊंगा जरूर उसकी अपने तमाम लिसनर्स को भी बताऊंगा. और चाची की वजह से जो है वो एक जनरल नॉलेज की बहुत सारी चीजें जो है सामने आती हैं और हमारे साहबजादा की बातों से भी ये तमाम चीजें आप लोगों तक पहुंच रही हैं. हंसी मजाक भी साथ साथ हो रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच रही है. भाई मैं आपका साइलेंट लिसनर हूं. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. आमीन सुमा आमीन. सवाल का जवाब जो है अच्छा नासिर खान साहब का ये मैसेज है. नासिर भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया है मतलब बहुत हद तक दुरुस्त है लेकिन पहले सवाल दोबारा सुनिएगा. आप सवाल के जवाब तक पहुंच गए हैं 100%. सवाल मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं. लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ही देर में मैं इसका जवाब भी दे दूंगा. मैंने आज सवाल किया था किस औरत को हमेशा ये पता होता है कि उसका शौहर रात को कहां होता है. फिर एक बार किस औरत को हमेशा ये पता होता है किस औरत को पता होता है ये है असल सवाल. तो अच्छा जी नदीम भाई मैं प्याज का ठेला लगाता हूं आप क्यों मजाक समझते रहते हैं साहिबजादा साहब. अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कोलंबस के हवाले से जो बात की है ये बिल्कुल जो है जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है साहिबजादा की जानिब से चाची की जानिब से या मैंने थोड़ा बहुत कुछ जो बताया बिल्कुल दुरुस्त मिली है कि कोलंबस जो है वो दरियाफ्त करने जो है वो इंडिया का शॉर्ट रूट दरियाफ्त करने के लिए निकला था. यूरोप से निकला था ठीक है और अटलांटिक ओशन से निकला था. अब अगर दुनिया का नक्शा देखें तो यूरोप साइड से अगर आप जाएंगे ना तो राइट साइड पर जो है अटलांटिक ओशन है और लेफ्ट पर अगर जाएंगे तो अब अगर वो दरियाफ्त करने की शॉर्ट रूट दरियाफ्त करने के लिए निकला है तो आप ये सोचें कि पैसिफिक ओशन से अगर वो निकलता तो पैसिफिक ओशन से वो पहुंच जाता कैलिफोर्निया वगैरह और ये जापान वपान सबको क्रॉस करता हुआ जाता तो पता नहीं क्या क्या डिस्कवर कर रहा था. तो वो निकल गया था अटलांटिक ओशन की जानिब और मतलब कई महीनों की मुसाफत के बाद जो है वो वहां पर पहुंचा. और उसने जब वो वहां पर लोगों को देखा जब उस किनारे पर पहुंचा अमेरिका के तो उसने जब देखा तो वहां पर रेड इंडियंस थे. उनके चाल ढाल और रंग वगैरह देखकर वो बड़ा हैरान हुआ. खैर ये तमाम चीजें थी. अच्छा अब पीआईए के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमें साहिबजादा साहब ने पहले दी थी और उन्होंने ये भी बताया था जी कि पीआईए पहले पीआईए नहीं थी. मैं इनका वो मैसेज देख रहा हूं कहां गया. हाँ पीआईए की प्रवास के बारे में मस्कत. अच्छा इससे पहले ये बता चुके हैं हमारे साहिबजादा साहब और यही सवाल जो है चाची ने मुझसे किया कि तुम बताओ मुझे. चाची पीआईए की प्रवास का जहां तक ताल्लुक है तो उस वक्त ये बिल्कुल आपने दुरुस्त लिखा है कि ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक इदारा था और जब पाकिस्तान बना
تو یہ ضم ہو گیا اور پاکستان ایئر انٹرنیشنل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بن گیا. اور پرواز کے حوالے سے چاچی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ پی آئی اے کی پہلی پرواز. اب یہاں پر تھوڑا سا

वेलकम बैक आएंगे सुनियो, चाची को सब पता होता है, हमें पता है चाची को सब पता होता है। अच्छा भाई, सभी को ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा हमारे अब्बास भाई ने, तो बाप बेफिक्र हो जाए, समी गायब हो चुका है इस वक्त, यानी कि समझ रहे हैं ना अब्बास भाई, आपको गाना डेडिकेट कर देंगे हम, डोंट वरी, आखिरी वाला गाना करेंगे। अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं शुक्रिया अदा किया उन्होंने, दायमी खुशी हुई है, और आपको अलीमुद्दीन साहब नेक्स्ट ट्रैक जो है वो हम डेडिकेट करने वाले हैं। नवीद भाई कह रहे हैं भाईजान क्या हाल वाल है, ओके टेक नवीद भाई, यकीन मानिए। अच्छा जनाब, अब बढ़ते हैं सवाल की जानिब, और मैंने आपसे सवाल किया था कि किस औरत को हमेशा ये पता होता है कि उसका शौहर रात को कहां होता है, और मैंने बार बार ये चीज दोहराई कि किस औरत को हमेशा ये पता होता है, सवाल असल में ये है, ठीक है जी, कि किस औरत को पता होता है। तो इस हवाले से हमारे नासिर भाई ने जो है जो जवाब दिया था वो कब्रिस्तान दिया था, ये सवाल का जवाब है कब्रिस्तान। और हमारी प्यारी सी बहना जरीन नूर ने बहुत सारे जवाब दिए थे, लेकिन उन्होंने जो पहला दुरुस्त करीब करीब जो जवाब था वो था बीवी को, तो जाहिर है शौहर का जिसको पता होगा तो वो बीवी ही होगी, लेकिन बीवी कौन सी जनाब, बेवा औरत जो होती है उसको ये पता होता है कि उसका शौहर कहां होता है, यानी कि समझ रहे हैं ना, रात को कहां होता है, रात को क्या, दिन को क्या, हर वक्त उसको ये पता होता है उसका शौहर क्या है। ये सवाल का जवाब था, पहेली थी, थोड़ी सी ट्विस्ट थी, तो इस वजह से सारे कह रहे दिमाग की लाना भाई छोड़ो ये, नदीम भाई दस दिन। और स्कैंडिनेवन, ये हमारे 100% साहिबजादा साहब ने ये भेजा होगा। तो एनीवे जनाब, फौरन से बेशतर लास्ट फरमाइश पूरी कर रहा हूं हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन साहब की, उन्होंने इस वक्त सुना नहीं था, हमारे बुजुर्ग हैं, लव यू करता हूं मैं सब बुजुर्गों से, तो इनकी फरमाइश पूरी करना जरूरी है जनाब। सज्जाद अली की आवाज, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे। सुनो, आप लोगों के मैसेजेस प्यारे प्यारे, पार्टिसिपेशन, टाइम का पता ही नहीं चलता। और आज बड़ा अच्छा लगा मुझे, हमारे बहुत से पुराने लिसनर्स दोबारा से वक्त निकाल कर आए शो में, और हमारी प्यारी सी चाची खुसूसी तौर पर चार चांद लगा देती है। हमारी प्यारी चाची, चाची जी से ग्रेट हैं जी, हैं जी। नए और पुराने दोनों लिसनर्स, तो जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और इसके साथ ही अब आपसे इजाजत भी चाहनी है। जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, बल्कि ट्रैक नहीं है, ये एक कलाम है जो कि आप सबकी समातों की नजर कर रहा हूं, और हमारे अब्बास भाई और नासिर भाई जो हैं इन दोनों को डेडिकेट करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जनाब कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

أنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به